जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जय। कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जय। गोविंद।